अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

0: रुक छोरी रुक,
1: सर पे न झुक, अच्छी नहीं ये बहाने।
0: रुक छोरी रुक,
1: सर पे न झुक, अच्छी नहीं ये बहाने।
0: अरे तक जरा तक,
1: जल्दी से बक, कहता है क्या वो दीवाने।
0: छोरी छोरी छोरिया,
1: जा छोड़ जा जा जा छोड़ जा जा जा छोड़ जा।

0: होश हुए गुम, देखा जो मुखड़ा तुम्हारा।
1: होश करो तुम।
0: होश हुए गुम, देखा जो मुखड़ा तुम्हारा। आशिकों की सुन,
1: छोड़ मेरी धुन, वैसे ही कर ले गुजारा।
0: आ आ आ चोरी, आ आ आ चोरी, आ आ आ चोरिया।
1: जा जा जा छोरा, जा जा जा छोरा, जा जा जा छोरा, जा।

0: मैंने कहा आ,
1: मैंने कहा जा,
0: मिलकर बना आ जा। मैंने कहा आ,
1: मैंने कहा जा,
0: मिलकर बना आ जा। मैंने कहा हाँ,
1: मैंने कहा ना,
0: मैंने सुना आ आ आ आ चोरी आ आ आ चोरी आ आ आ चोरिया।
1: जा जा जा छोरा जा जा जा छोरा जा जा जा छोरा जा।
0: आ आ आ चोरी आ आ आ चोरी आ आ आ चोरिया।
1: जा जा जा छोरा जा जा जा छोरा जा जा जा छोरा जा।

0: you are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig tot niets meer aan de hand op de wegen op dit moment in Nederland. Eén korte file nog in het zuiden van het land op de A67 van Geleen naar Duitsland. Bij de grenscontrole is daar een kleine 10 minuten oponthoud. En in de N434 Zoeterwoude-Wassenaar, daar is de Corbulo-tunnel nog altijd in beide richtingen dicht door een technische storing. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: जय शंकर जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति जय गोरा गोरा जय गोरा माँ पार्वती। प्रिय भक्तों, सावन के महीने में शिवरात्रि के पावन अवसर पर भक्तजन लाखों की संख्या में लंबी लंबी कतारें बनाकर हरिद्वार से कांवर में गंगा जल भरकर बड़े ही श्रद्धा भाव से शिव कांवर कांधे पर रखकर पैदल चलकर बम बम का जयकारा लगाते हुए शिव भोलेनाथ के द्वारे पर आते हैं। तो आइए मिलकर गुणगान करते हैं महादेव का।

0: उजाला रेडियो देश भर में, तू जान है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इस वन हेल नीलम तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए।
1: कोट यार तोर जन्मदिन है तोर सालगिरह है और खाए त्राव तोर विवाह होने वाला है तोर शादी होने वाला है या किसी का मुंडन संस्कार है उजाला रेडियो पर फरमाइश आप दे सकते हैं 15 फरमाइश फोर मार होने तोरो और उजाला रेडियो स्टूडियो मेल ना info@ujala.nl

0: ना ना ना ना ना ना गुरु छोड़ मुझे मत जाना, अरे ना ना ना ना ना ना गुरु छोड़ मुझे मत जाना। प्यार से तेरा दिल भर देगा ये तेरा दीवाना, अरे प्यार से तेरा दिल भर देगा ये तेरा दीवाना, अरे ना ना ना ना ना ना ना ना।
1: लड्डू बोल लड्डू
0: लड्डू
1: लड्डू लड्डू लड्डू
0: लड्डू
1: ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू। एक नजर है एक हंसी है कीमत किसकी बंदू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू। दिल का रंग जिगर के टुकड़े अरमानों का हीरा, दिल का रंग जिगर के टुकड़े अरमानों का हीरा, इनको लेकर बांधे लड्डू खाए दास कबीरा। रे पर देखो देखो आहा आहा, रे पर देखो देखो आहा, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू।
2: अबे हट, खाली जिसका पेट उसका प्यार से खाली बोल, और इस लड्डू में दुनिया का हर ऐश दिया है घोल। सब जय जय इसका बोल, सब जय जय इसका बोल, सब जय जय इसका बोल। सोने का लड्डू
1: ले लो प्यार का लड्डू,
2: ले लो सोने का लड्डू,
1: ले लो प्यार का लड्डू,
2: ले लो सोने का लड्डू,
1: ले लो प्यार का लड्डू,
2: ले लो सोने का लड्डू,
1: प्यार का लड्डू,
2: सोने का लड्डू,
1: प्यार का लड्डू,
2: सोना
1: प्यार,
2: सोना
1: प्यार,
2: सोना
1: प्यार,
2: सोना।

ये है उजाला रेडियो। रात और दिन, सुबह से लेकर शाम तक, 24 घंटे सिर्फ आपके लिए।

क्या खूब आंखें है तेरी, क्या खूब आंखें है तेरी, जी लेंगे देख देख कर इनको। फिल्म काम चोर का गीत आप सुने किशोर कुमार और अलका याग्निक से उजाला रेडियो पर।

तुम क्या मिले जाने जा, तुम क्या मिले जाने जा, प्यार जिंदगी से हो गया। लता जी एंड उदित नारायण, फिल्म सातवां आसमान से आप सुने। अब एक बार फिर लता जी, इस बार मनमोहन सिंह के साथ, फिल्म वारिस का गीत।

ये उन दिनों की बात है जब हम पागल पागल फिरते थे, उन दिनों की बात है। तुमसे अच्छा कौन है फिल्म का नाम और गाने वाले सोनू निगम एंड सरिका कपूर, इन दोनों से प्रोग्राम में गीत को आप सुने उजाला रेडियो। एक बार फिर सोनू निगम, इस बार सुनिधि चौहान के साथ।

सोनू निगम एंड सुनिधि चौहान, इन दोनों से आप सुने कि जब से मेरे दिल को हुए उफ। फिल्म का नाम तेरी मेरी कहानी और स्टेशन उजाला रेडियो।

क्या वो मोहब्बत जिसका हिसाब लग जाए, बोले वो तो लगे के रब्बा बच जाए, लड़ मरेंगे लोग आग लग जाए, चेहरे से तेरे जो नकाब

इतिहास की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते और आदाब। हमेशा की तरह जिनके घर पर कोई भी खुशियां, जन्मदिन, सालगिरह, विवाह, शादी हो, आप को हार्दिक से बधाई और तहे दिल से मुबारकबादी अर्ज़ किए जाते हैं। जो कोई बीमार या तो लाचार है तो उनकी तंदुरुस्ती के लिए भगवान से प्रार्थना, अल्लाह से दुआ है आप की ताकत और तंदुरुस्ती के लिए। इतवार का शाम का प्रोग्राम, 28 तारीख जूनी का प्रोग्राम, वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम, बैठक गाना हंगामा। करीबन 6 मिनट व्यतीत हो चुकल है, 3:10 खुद में दखल माओ।

0: बैठक गाना हंगामा वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम, यहां से लेकर ठीक पांच बजे तक आप लोग सुनेंगे बैठक गाना का प्रोग्राम। अगर आप लोग मुझे ऐप करना चाहेंगे कोई भी बैठक गाना अगर आपको सुनना है 020-363-0808 पर, दिस 020-363-0808 पर, या वेल आई बॉय बैठक गाना का प्रोग्राम। चलिए प्रोग्राम में पहला बैठक गाना जो आप लोग सुनेंगे तो खास करके इस तरह से
1: इनको न

शाबाश शाबाश। और इस तरह से पंडित राम प्रसाद राम खेलावन जी के अवांश में ये खूबसूरत सा भजन जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने। वैसे इसका प्रोग्राम बैठ गाना हंगामा, चलिए एक गाना प्रोग्राम में हम आप लोग के लिए सुनाएंगे और खास करके सभी आज जा और आज जी के लिए आई आई

0: शाबाश शाबाश मेरे आजा और आजी के गीत जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने और वो भी लखन कारिया जी के आवाज में। उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुने हैं 9 3 3 9 लाख 9 लाख पर अगर कोई भी बैठक गाना आप सुनना चाहेंगे फियाना शहर में जहां पर श्रीमान राम सुख भी प्रोग्राम को बैठ के सुने तो भाई जी ये गाना तुम्हारे नाम
1: खूब

वल लहरिया के बतिया बोले खूब झलकी एंड दुनु मेला करे अभिमान। और इस तरह से यूसुफ खान जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने। चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे जमीर हुसैन जी।

0: समरिया हमारी, अरे बातें सुन लो। और इस तरह से जमीर हुसैन जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने, वैसे इसका प्रोग्राम बैठ गाना हंगामा जो आप लोग सुन रहे। और चलिए हमारे प्यारे सुने वालों, अब की बार द यंग टाइगर ऑफ बैठ गाना विशाल हीरा। वेल हमार, अरे वेल हमारे रनिया। और देखा जाए लाइव सफेद शहर में जहाँ पर सानू भी प्रोग्राम को बैठकर सुने हैं, गर्म या मानो जानी तीसरी चलावे है स्ट्राइक करे कि ना आज
1: मीठा पर सच छिपे।
0: जला रेडियो के साथ घर घर के काम होते हैं।

0: शाबाश शाबाश हमारे रनिया, सच बता दे बतिया, और इस तरह से खासर के द यंग टाइगर ऑफ विशाल हीरा। और चलिए हमारे प्यारे सुनो लो उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं, वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा।
1: बोलो ना, स्प्ले गुड श्रॉम या ना।

0: चलिए वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम में अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो गाने वाले होंगे देखा जाए देवानंद गाथो। और चलिए प्रोग्राम में इस तरह से आप लोग सुनेंगे, अगर कोई भी बैठे गाना आपको सुनना है तो 9 3 3 9 9 पर आप लोग मुझे ऐप कर सके हैं और आपके लिए गाना हम जरूर से घुमा देंगे।
1: चलेला बजरिया चलेला बजरिया चलेला बजरिया चलेला बजरिया।
0: अरे भैया चली ना बजरिया।

अरे भैया जीनी जीनी चले न बजरिया, आई बोल देवानंद गातो की आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने यार, उजाला रेडियो का प्रोग्राम, वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम एंड रोटरडम में भाई जी भैया रतन राम दुलारे पांडे जी भी प्रोग्राम को बैठकर सुने। तो भाई जी ये गाना तुम्हारे नाम खरीश।

हाई बॉय शाबाश शाबाश कृषम छेदी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे वैसे इसका प्रोग्राम और चलिए अब की बार तो देखा जाए सुरिनाम में स्टेफी पराख भी प्रोग्राम को बैठ करके सुने अपना और खांसर के गानों को मांग के अपना लोफली के लिए सबीता के लिए प्यार एंड मोहब्बत के साथ। तो चलिए ये गाना जो आप लोग सुनेंगे हमारे प्यारे सुने वालों और गाने वाले होंगे द किंग ऑफ बैठ गाना देवेंद्र सिंह सेवना जी के आवाज में और इस तरह से आप सुनेंगे

मांगी थी, कैत मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। एंड चलिए देखा जय सुतमेर में जहां पर मून एंड संता प्रोग्राम को बैठकर सुने और इस गाना को मांग किया है।

0: शाबाश तुनबीन सोनी जगरिया आजारे आजारे सनम। इस तरह से करिशम शिखेदी जी की आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, ब्रेडा शहर में जहां पर इस वक्त श्रीमान और श्रीमती बिहारी प्रोग्राम को बैठ करके सुने, तो ये गाना आप दोनों के नाम।
1: ऊंचे स्वर से बांसुरी बजाई जब घनश्याम ने, सारी आलम झुक पड़े उसके नजर के सामने।
2: तो क्या
1: मोर

शाबाश। इस तरह से स्वर्गीय रामदेव चैतु जी के आवास में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने और हमारे प्यारे सुनने वालों, ठीक है, चार बजने वाले हैं। नाद ब्रेक नाद रखलाम बेनक में तरफ यार खुद में रखल माओ यू आर उजाला रेडियो वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा यार।

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ozone Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाज़ें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl, 15 आवाज़ें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

जलंग रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं हमारे प्यारे सुनने वालों, यहां से आप लोग सुनेंगे प्रोग्राम दूसरा भाग वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठेगा ना हंगामा खुद में नखल माओ। करीबन 8 मिनट बैठी छुचुकल है 4:00।

और इस तरह से करमुआना बांचे कोई और खास करके सुनील राम सुंदर जी के आवाज में ये खूबसूरत सा गीत जो प्रोग्राम में आप लोग सुने आई बो यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा और चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे एक और ऐसा गीत जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे एंड इस बार इस गीत को मांग करने वाले हैं देखा जाए तेल बरुख में जहां पर इस वक्त सुनीता भी बैठ करके प्रोग्राम को सुने हैं तो सुनीता चलिए गाना तुम्हारे नाम कर देता हूँ सविता सिंह एंड द किंग ऑफ बैठ गाना देवेंद्र सिंह सिवना जी

शाबाश शाबाश, मैं भावरा तू है फूल, और ये जवानी ये लौट के आए ना। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने, सविता सिंह एंड देवेंद्र सिंह शिवनाथ जी के आवाज में, एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम।

0: सरस से यान करण जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे एन अब की बार।
1: ओ दिल ऐसा किसी ने मेरा
0: अब की बार। चलिए गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो इस गाना को मांग करने वाले हैं फैन सपोल्डर में एमी जी के लिए गाना पेश है स्वर्गीय रामदेव चैतू जी।

0: और चलिए जो गाना हम एमी के लिए घुमाना चाहेंगे तो ये गाना होना चाहिए और इस तरह से गाना जो आप लोग सुनेंगे
1: प्रोग्राम में जिसमें हिस्सा ले रहे हैं सुरनाम का सभी मशहूर टॉपर्स और ये खास
0: और चलिए यार ये गाना

0: शाबाश शाबाश बहे अखियों से दार बोले जाऊं कहां दिल तोड़ के। और इस तरह से ये देवानंद गातो के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने वैसे इंदिश का प्रोग्राम बैठ गाना हंगामा यार
1: गावन लिए जाए रे गावन लिए जाए।
0: और देखा जाए सत्य भी प्रोग्राम को बैठ कर सुने खुद मिला

शाबाश बरसतियों में दिए राजा गवर्नर लिए जाए। इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने और जीवाड़ उजाना रेडियो का प्रोग्राम यार।

ना ना नानी से बोले इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे यार, उजाला रेडियो का प्रोग्राम, वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम। करीबन 20 मिनट बाकी रहा 5 बजने में और एक गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे। दलहा शहर में भाई रॉबर्ट भी प्रोग्राम को बैठ कर सुने। भाई रॉबर्ट ये गाना तुम

हाई बॉय वेल शाबाश शाबाश इस गाना से जो आप लोग सुने और आशा कि आप सभी को भी पसंद आए होंगे। और चलिए अब की बार तो देखा जय परिवार सौदागर अमसराम उसमें भाई जी ये गाना तुम्हारे नाम

शाबाश बाके मोरे नैना ना माने रे। आओ इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं। पौने पांच का वक्त है, क्वार्टर फॉर फाइव, और पांच बजे तक बैठक गाना जो आप लोग सुनेंगे तो थोड़ा देर तक और आप लोग के साथ। एंड अब की बार एक और खूबसूरत सा गीत जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे, 9203603908 पर आप लोग ऐप कर सके व्हाट्सएप का फोन का नंबर। आओ चलिए गाना जो आप लोग सुनेंगे।

और देखा जाए शारदा आरण में भी प्रोग्राम को बैठ कर सुने हैं। और हमारे प्यारे सुने वाले गरम लाइफ ड्रिंक या वेल पानी खूब पिए यार।

0: शरण सिंह और दीनदयाल, हाँ भाई, और शरण सिंह गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, और वैसे इसका प्रोग्राम करीबन देखा जाए तो 6 मिनट बाकी है 5 बजने में।
1: आए भवन नहीं आए, भवन नहीं आए, भवन नहीं आए, अरे सखी

0: और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने हमारे प्यारे सुनने वालों, और देखा जाए तो घड़ी तरफ करीबन 2 मिनट बाकी रहा 5 बजने में। इसका मतलब यह हुआ कि प्रोग्राम में एक आखिरी बैठक गाना जो आप लोग सुनेंगे, और भाई गलन को आने वाले हफ्ता में नेक्स्ट वीक सोमवार को हम वही गाना जो आपने फरमाइश किए आपके लिए जरूर से हम पेश करेंगे। और यार धीरे धीरे धीरे धीरे और आने वाले सोमवार को फिर से जरूर से प्रोग्राम को सुन लेना, दिन में 4 बजे से शाम में 4 बजे से। और आशा है कि आज का प्रोग्राम बैठक गाना जो हमने बनाए सजाए आप सभी सुनने वालों को पसंद आए होंगे। हमारा साथ देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। और आने वाले सप्ताह इतवार को फिर आप लोग से मिलेंगे ऐसा ही प्रोग्राम लेकर के, हम फिर आप लोग से मिलेंगे। आप लोग मौज रहिए, जो भी आप लोग करेंगे इतवार का शाम में, जो भी आप लोग करेंगे मौज से करिए, प्यार से करिए, दुलार से करिए यार। अपना इतवार का शाम और रात्रि मौज से बिताइए,
1: गोरी धीरे
0: अपने आप जरूर से ख्याल कीजिए
1: ना जाए,
0: और इस गर्मिया में तो ना तो ब्लैक थी मत ड्रिंक
1: ना जाए गोरी
0: जब आओ
1: झलकी ना जाए गोरी धीरे चलो गगरी।
0: आप लोग मौज से रहिए, अपने आप को जरूर से ख्याल कीजिए। खिदमत की आपका दोस्त सुभाष सिंह गोविंद, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते, अन खुदा हाफिज।

के घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है। उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं, 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो। स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net।

0: अच्छा, हम क्या बताएं, आपसे मिलकर कितना अच्छा लगा,
1: आपसे मिलकर अच्छा लगा, अच्छा लगा।
0: यू आर का पैगाम है रेडियो के क्षेत्र पर हर काम काज के वास्ते। आप फोन कर सकते हैं एम्स्टरडेम में 020-409-0807 पर, 0204-09-08-07 पर। मिले जुले संगीत में ये सिलेक्शन भी हो जाए, हरे हरे भंगिया की हरी हरी बूटी कैसे छन गई, हाय हाय।
2: अजी ये ऐसा वैसा दम नहीं, भंगिया का दम है।

with the Evergreen Voice, किशोर कुमार की आवाज, बादल नामक फिल्म से, हरी हरी भंगिया की हरी हरी बूटी कैसे छन गई, हमरी महबूबा, अरे हमरी महबूबा, हमरी दुल्हन।

हमारी महबूबा हमारी दुल्हन बन गई, हरी हरी भंगिया की हरी हरी बूटी कैसे छन गई, हमारी महबूबा हमारी दुल्हन बन गई। द मैन विद द एवरग्रीन वॉइस, किशोर कुमार और साथियों की आवाज में, बादल नामक फिल्म से।

फिल्म फने खां से आइए मिलकर सुनते हैं मोनाली ठाकुर की आवाज। फू बाय फू हम के लगे शुशु हम आयला।

मोनाली ठाकुर की आवाज फू बाई फू ओके लग गए लू इट्स यू आर उजाला रेडियो का पैगाम मिले जुले संगीत आपकी खिदमत में पेश की जा रहे हैं। ऐसे में ये सिलेक्शन भी तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा यार आना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना।

सुन सुन सुन ओ मेरी सोनी, हो गई क्या अनहोनी। बीते हुए दिनों की याद में ये सिलेक्शन भी पेश खिदमत है, फिल्म का नाम नाकाबंदी। सुन सुन सुन ओ मेरी सोनी, हो गई क्या अनहोनी।

0: अरे क्या हुआ? शुक्रिया
1: शुक्रिया।
0: सुन सुन सुन, ओ मेरी सोनी, हो गई क्या अनहोनी?
1: शुक्रिया।
0: शब्बीर कुमार और द मैरिड क्वीन ऑफ इंडिया आशा भोसले की आवाज, फिल्म का नाम नाका।

यू आर उजाला रेडियो का पैगाम आपके खिदमत में पेश किए जा रहे हैं। वैसे रेडियो के क्षेत्र पर हर एक कामकाज का वास्ते आप सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह में 10 बजे से लेकर दिन में 3 बजे तक फोन कर सकते हो और नंबर है 02049907-0204-09-08-07 पर। रेडियो के क्षेत्र पर हर काम और काज के वास्ते इश्तहार, जरूरी खबरें, खास फरमाइश, मृत्यु समाचार, मौत की खबर, जो भी कार्य के वास्ते आप डाल कर सकते हैं एमसडे में। उजाला रेडियो, यू आर वकाओ। मिले जुले संगीत में आइए अब मिलकर सुनते हैं सुरों का बादशाह, संगीत का फरिश्ता पद्माश्री मोहम्मद रफी साहब के चांद मेरा दिल और चांदनी हो तुम, क्या बात है। Such a sweet song. Chand mera dil, chandni ho tum.

0: दिखाओ ना।
1: देख लेना दिन महीने साल गुजरते,
0: दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम प्यार में यूं ही मरते जाएंगे।
1: जीते प्यार में मरते,
0: द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, लता मंगेशकर और हसीनों के पुजारी किशोर कुमार की आवाज। इट्स यू आर उजाला।

0: हमारा प्रोग्राम एक आखिरी सिलेक्शन हम आपको सुनाने वाले हैं।
1: ये गुलशन फूल कलियां बहार वादियां ये मौसम
0: सभी श्रोताओं को हमारा साथ देने के लिए सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया।
1: ये कायनात कुछ भी नहीं,
2: कुछ भी नहीं,
1: कुछ भी नहीं।
0: अगर हमारे मुखारबिन से कोई भी गलत शब्द फिसल गया हो तो आप हमें बेशक ना समझ जानकर माफ कर देना। यहाँ तक आपका खादिम शहीद गुलजार यूआर के साथ एक बहुत ही शुभ दिन आपको प्रकट है। हम आपसे फिर मिलते हैं, एक शुभ दिन।

और यूं ही रोने नहीं दूंगा, अगर तुझे हो गया कुछ तो सारी दुनिया जला देंगे। फिल्म एनिमल का गीत को आप सुने। उजाला रेडियो पर सुनने वालों, एक और गीत

तू हाँ तू मानू मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा। गायक किंग की आवाज में एक और गीत पेश है अब। फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया से निकाला हुआ

चलिए उजाला रेडियो पर, यहीं से अब गीत और गजल की दुनिया प्रोग्राम का दूसरा भाग पेश है।

जैसा रंग है तेरा और सोने जैसी बाल, एक तू ही धनवान है गोरी और बाकी सब कंगाल। पंकज उधास की आवाज में आप सुने और आप जो सुन रहे हैं ये हमारी खुश नसीबी है। सुनने के लिए शुक्रिया।

मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मेहदी हसन की आवाज में आप सुनिए। और इस प्रोग्राम के बारे में कुछ कहना है आपको तो आप एक ईमेल भेज सकते हैं और पता है info@ujala.nl।

मैं जिंदगी की सहर लेके आ गया, कातिल को आज अपने ही घर लेके आ गया। जगजीत सिंह की आवाज में गजल को आप सुने और उजाला रेडियो है ये प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया, इसमें हिस्सा ले रहे हैं अब फारिदा खानम।

ये मर जाएंगे, हम तो लुट जाएंगे, आज जाने की जिद ना करो। फरीदा खानम के आवाज़ में गज़ल को प्रोग्राम में आप सुने।

का अंजाम जुदाई क्यों है, अब तो हर वक्त यही बात सताती है हमें। तलत अजीज की आवाज में आप इस गजल को सुनें।

प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया में आखिरी गजल आप सुनेंगे। उम्मीद है आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आए हुए होंगे। हम फिर आने वाले हफ्ता में आपसे मिलेंगे, ये वादा रहा।

हाँ, तुम मुझ में छुप कर मुझसे कुछ बोल रही हो। कोयल बोल रही है या तुम बोल रहे हो? पंकज उदास की आवाज में इस गजल को आप सुने प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया में।

ना मिलूंगा ना खत लिखूंगा तुझे, तेरी खुशी के लिए खुद को ये सजा दूंगा। अशोक खोसला जी की आवाज में आप सुने, और अब भूपेंद्र जी हिस्सा ले रहा है।

अब भी वो गुजरा जमाना याद आता है। अब सवाल है कि तुम्हें भी क्या कभी कोई दीवाना याद आता है। गुलाम अली की आवाज में गजल आप सुने हैं।

लगे मगर मुस्कुरा ना सकेंगे क्योंकि अब जिंदगी में मोहब्बत नहीं है। मुकेश जी की आवाज में गजल आप सुने, आपके साथ और हजारों लोग भी सुनते हैं उजाला रेडियो को।

कल, हाँ कल 14वीं की रात थी और कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। जगजीत सिंह की आवाज़ में आप सुने गीत और गजल की दुनिया आपकी खातिर बनाया जा रहा है।

के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। चंदन दास की आवाज, गीत और गजल की दुनिया, आप ही के लिए उजाला रेडियो पर।

घर की उजियारे सो जा रहे हैं। हम बहुत सालों के बाद आज इस गीत को खुद सुनना चाहते थे, इसलिए आपके साथ हम सुन लिए तलत अजीज की आवाज में। आज हम आपको फिर उन गीतों और गजलें को सुना रहा हूं जो सुन करके शायद आज भी आप मुस्कुराते होंगे, गुनगुनाते होंगे और कभी कभी आंसू भी बहाते होंगे। उजाला रेडियो प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया, चित्रा सिंह जगजीत सिंह के साथ।

0: तो जिंदगी में और क्या रह जाएगा। चित्रा सिंह की आवाज में आप गजल को सुने। खुशी हो या गम, खुशी हो या गम, उजाला रेडियो है आपका साथ हर दम। और हमारे सुनने वालों, अब एक आखिरी गजल आज का प्रोग्राम में। बस कुछ ही देर में प्रोग्राम को हम खत्म करेंगे, लेकिन उदास मत होना। जब जब आप उजाला रेडियो को सुनेंगे, हम आपसे मिलेंगे।
1: गजल कह रही है,
0: आने वाले हफ्ता फिर सुनते रहना एक नया प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया हमारे साथ, आपकी खातिर।

दीवानी थी वो, याद चिश्ती पाक में बर्बाद दीवानी थी वो। मुंह छुपा कर एक गोशे में सदा देती थी वो, गोद फैला

उजाला रेडियो देश भर में तू जान है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नीलम तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए

दिल वालों के इस मेले में मौज मना लो यारो, कस्टम बस्टम कस्टर बस्टर सबको गोली मारो। दिल वालों के इस मेले में मौज मना लो यारो, कस्टम बस्टम कल्चर बस्टर सबको गोली मारो। मुक्त मिले जब दिल की बुटिया फिर सदमी को झेलो, मजा ले लो। घुमा रुम्मा घुमा रुम्मा घुमा रुम्मा गेलो ओ गेलो ओ गेलो ओ घुमा रुम्मा घुमा रुम्मा घुमा रुम्मा गेलो ओ गेलो

चेहरे, इन फूलों को गूंज के प्यारों सर पर बांधो तेरे, दुनिया तुमसे खेल रही है, तुम दुनिया से खेलो, मजा ले लो हाँ, घुमा रुम्मा घुमा रुम्मा घुमा रुम्मा खेलो, ओ खेलो ओ खेलो, ओ घुमा रुम्मा घुमा रुम्मा खेलो, ओ खेलो ओ खेलो, ओ कल की बातें कल पे छोड़ो, आज मजा ले लो, मजा ले लो।